0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: Twice FM 90.4 MHz.
1: सुन त मेरा के पर हेर त
2: केही त छैन त
1: केही छैन त्यसो भए मेरो नजरबाट किन हट्दैनौ तिमी
2: बाई